0: 있잖아요 눈물이 안나러 멀려커
1: 커버터 버려 에이? 오호 아저 다 보일러버터 버려 게야 커버터 다 मत पहिलो पटक पढे जस्तै भयो कि त्यही भएर खैरेनी मागेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो भेट ल तबाट गाउनुहोस् है हजुर
0: के खाऊ दवाई तिम्रो यादले मोटो पर्यो भेटै भन्न कि माया भेटै भन्न कि कट
1: कबाट

How dare you? खबरदार तो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।

0: भनेपछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइन्थ्यो
0: किन्थ्यो होला।

0: अपना बिजनेस बेचकर आ रहा हूँ, आपके लाड प्यार ने मार दिया मुझे।
1: एक बिजनेस फेल हो जाने पे इंसान नाकाम नहीं हो जाता।
0: माँ ये बात डैड को बताए ना।
2: बहुत कम उम्र में मैंने ये जान लिया था कि इंसान के लिए कामयाब होना जरूरी है।
3: मुझे सजा देने के लिए अंकुश शाहनवाज ने मुझे दो दो डिपार्टमेंट की ड्यूटी पर लगा दिया दिन रात।
4: एक बहुत वक्त होता है जब हमारी अकल हमारा साथ नहीं देती।
0: हर वक्त बिचारी सफाई पेश करती रहती, कभी इस घर पे कभी उस घर पे। इस बिचारी को मेरे जैसे कॉम्प्लेक्स इंसान के साथ बांध दिया गया अखबार होने के लिए।
2: बहुत ज्यादती करती, मैं तुम्हारी शादी करवा दी।
5: बेटियों की शादी करवाना ज्यादती नहीं होती।
2: बहादुर लड़कियाँ हारे हुए लहजे में बात करती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे।
5: बहादुर मुझे बहादुर रहने की सदी है। हम
6: डॉक्टर बहू देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा।
1: हेलो,
2: कहाँ बने रहुआ?
1: बस तोहरा दिल में।
2: घर आवक बाकी ना हो?
1: अरे आ जाई, तू कहता आसमान चीर के आ जाई का।
2: आके दिखाए तो नहीं।